0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा
1: कहा कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की।